हाँ जी प्रोग्राम के बिल्कुल गपशप लगी जी और प्रोग्राम अभी ठीक थर एक बजे पर है बिल्कुल तो सपाता दो छ मंगल पोरस प्रोग्राम दरता पेश के दो लंच टाइम जाबा दरता एमएसडी पेश के वालों के ना एमएसडी नष्टशा एमएसडी कली तथा लाइट नए एमएसडी नष्टा प्रोग्राम बा

জি, প্রোগ্রাম কি বিলকুল তুষার লাইছে, কল কেবল সে মেসেজ কেবল সে কল কেবল দফার ডায়াল কেবল সে পিটিসিএল নম্বর পিটিসিএল নম্বর দে 0927291292 यानी के पीटीसीएल नंबर डायल कवलिशे औदे न लवा असे मसला सुर हमने वाले डरती जी सरंग की पीटीसीएल नंबर वे आई केना नो डारे के मतलब नंबर डायल कड़ाई शेमो नंबर जर वो लगी जी आओ मैसेज जी किम दी केना बिल्कुल न तो मुझे फ्री टेक्स्ट कवले जी शा आओ बिल्कुल फ्री टेक्स्ट कवले शे पो ऑफिशियल नंबर बांधे दवा नंबर दी पदे द्वारो की जी कमी बने हम मैसेज कवे बिल्कुल कवाले शे मोत बर रिसीव कीजिए और तुस मैसेज वजह प्रोग्राम किसे मिलो हो और नंबर दर तुम्हें नंबर दी 0345993580 दसी तरीके से हाँ नोट कवाले शे या दिन लवा 0345993580 0345993580 0345933 2580 आओ बल नंबर दे 0331-5640-331-52-65340 दादवा नंबर दी नो पदेशे चिकम नंबर बने हाँ कॉल कवाई सॉरी मैसेज कवाई मैसेज कवाले हो कॉल ओवर बने बिल्कुल नगे ठीक सो कॉल चुकम जैसे पदे नंबर बने बिल्कुल नशे मिलो कॉल बतो से पीडीसीएल नंबर बने कवाई

हाँ जी बिल्कुल सही। नो मैसेज हुकम दे तो से कवले शे पो 0345-933-2580 नंबर माने बल नंबर दे 0331-5563-40 रिक्शा दे द्वार नंबर माने तो से प्रोग्राम के मोता मैसेज कवले शे। और देने इलावा हाँ जी द सॉन्ग चुकम दे वुर भी

0: हाँ जी, कौन तरफ से प्रोग्राम की कॉल शामिल हो, किसी शिकाल बने फर्स्ट कॉलर सो को दिखा हम जिनरसी, लेट्स सी फर्स्ट कॉलर आप दो शू। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। खजी बिल्कुल कॉल नहीं मिले शो, खुद ही खबर है ना कभी मो बख्याल शर्मी जी। खजी कसी कॉल बन जी, बल सो को दिखे हम जना दे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: पखेर जोड़ ताजा दसो को दिखे से ना मतलब द रजमक ने बाद का डिकल और वो डी खान था
1: यार रजमक तक की बाबू जने लूड़ी जने
0: बलावरी ना मतलब तो सिकला रजमक ने लूट सही के ना मेदल तक की कोर चिकी मी दा तू चाहता हवाला के भाई मतलब नहीं पूरा सोर बाद मतलब डिहान तो शिफ्ट कीजिए काड़े बोरी अच्छा सही असे जिकला था मतलब रजमक ना डिहान तसे या डिहान ना बिया रजमक तसे अलते जी सड़ाई टाइम थी लगा यूज की जिकला सड़ाई टाइम थी की गना बिया अगी सोई पसी सड़ाई हफा हुई तो से हफा हुई गना
1: राव मिस को चाहिए वाला थी या डिहान ता खास भी
0: अच्छा
1: वो जब डिहान से ते टाइम देर तेर की अपन दस पेज में आते जरा रजमक ता खास दा
0: दा अच्छा मतलब हफा ना हुए
1: बर्फ ना लूट से
0: अच्छा ना डिहान के होया गर्मी तो मतलब
1: अच्छा
0: ना गोरा तो रजमक न से रजमक के हो गोरा यखनी दो नो पदे यखनी के हो गोरा चिदा हलवा गानी भी और दादा शपे प्रोग्राम दस लगे दिले भी प्रोग्राम और वे चाय बट सर तयूर भी खान खुदा था कभी

0: या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: ताची हम ना उम्मीद अगर जाए देव खो डॉक्टर पतलाश के नुबिया इंतजार दुकु में खबर दे उम्मन राशि मजिद खान होम्योपैथिक ता आओ दुखपनो बीमारियानो इलाज हो के मजिद खान होम्योपैथिक क्लिनिक की ताचे दमे दे हर किस्म बीमारियानो आसाबी बीमारियाने जोड़ों में दर्द ना दमला दर्द अरकुन्निसा द गुर्दे काने त्रिखी काने अरे सोलई बवासीर बगैर ऑपरेशन यो ख इलाज कवले से औलाद बचा निश्ता औलाद हम अल्लाह ताला अलवी नेमत है नो बिल्कुल रात ले से इलाज कवले से एड्रेस सुंदर सर वाखले जेल चौक अदालत सर बिल्कुल निजदे अरसलान मार्केट करक कॉन्टेक्ट नंबर 0347 20 45 545 कॉल ओके
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमात आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
3: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को कामयाब बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क 1 रंग।

जी डेरा जिया तो मनन कवि फातिमा एंड कैनात लंडी वाला दे मैसेज होकर डेरा डेरा मनन बेल के लिए मिस जी वदे टाइम मन शो हुआ नर्स से छुट्टी बने रहे

अच्छा जी, हाँ जी सही ना, तो सभी लिखा फकीर से डेरा मना ना मुस्कान खटक यो जहान बनना कभी, थैंक यू फकीर से माशा। नेक्स्ट सलाम, कैसे हो सुपर भाई, वेलकम टू द शो भाई, मैं आपकी छोटी सी सामना हटक एट 5 3 में हम मैसेज, अच्छा सही है बिल्कुल, हम मैसेज ऑलरेडी शामिल का डेरा मनाना। नेक्स्ट हाय भाई सरंग, ये उम्मीद दा छे शब वे शो नाइस दा अज मन हा द करकना नन सिमिस मजा कवि मुझे मोठू लुले सर तसलाम सही दा वालेकुम अस्सलाम डेरा मनाना फ्री सिमिस कन सक मजा कई यो जहान मनाना। फरिश्ता मैसेज कर दिया अस्सलाम वालेकुम वेलकम कैसे हो, शो नाइस है बिल्कुल आपकी तरह। वैसे तो मैंने जाना था कॉलेज बट मुझे पता था कि शो आप करोगे तो इसलिए पहले से ही तैयार हुई कॉलेज के लिए। सो अभी बस बिल्कुल ही तैयार बैठी हूँ कॉलेज के लिए और आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, और आपका प्रोग्राम खत्म होती ही बस जाऊंगी कॉलेज। तारीख अगर हो सके तो मेरे नेम एक अच्छा सा उर्दू सॉन्ग प्ले करें। खजी सही ठीक से बस प्ले भाई खुद से जो वो ना खैर ब्याह हम डेरा मनना टोलो तो इस्लाम हवेली दी यो जहान मनने के भी। नेक्स्ट सलाम मुना कबूल का तारिक भाई शरंगी शेज अनिला यमा और जैना तारिक भाई कपड़े गंजम प्रोग्राम हा और मासरा इश्मा मुस्कान हमदा फाइका और कायनात था और दीन लवा शुमाइला था आलिया था और युबना था युबनाहान था और सदफ फफाद चोले सर तसलाम वालेकुम असलाम डेरा डेरा मनना और जैना तारा दो जवाज सफादर सी हा यो जहान मनने को अनिल और मैसेज कर दे डेरा मनन लो या खजाशी और सलाम चलू था वही कहना चाहिए प्रोग्राम की कॉल बिल्कुल कॉल से मिलो लश के इंतजार रुके और पता नहीं चार मैसेज कर हनुम दिन दिल गए दिन लवे अस्सलाम वालेकुम किस्मत लीग कलवर्ट नियाजी स्टाफ ना और दिन लवा उमर तसलाम तारिक सिफ्ता सलाम सईद वाली का मसला डेरा मनाने कॉल बने हर वाला भी यो जहान बनने के भी। सलाम भाई सरंगी मैं शिद्र फ्रॉम रुजमक टोलो तसलाम दिवली दी मैसेज दे क्लियर ना दिली गलाए ब्याह डेरा मनाना और कल मजीर ब्याह मैसेज खड़े थे सही डे रवाना दिन बचे सलाम सर जी आप आए हो शो बहुत अच्छा है सर मैं सन हड़ाई डेरा मनाना लोया खास

बच्चे आपके और अम्मी के बातों में आसमान और जमीन का फर्क है। वाह जी वाह जबरदस्त माह गुरु ठोले लैंग्वेज सकड़ी थी सका पता ना लगी मोटिक्स। सलाम भाई बेस्ट ब्रदर संग ये अभीखा मरवतियम द अभीखा मरवतियम सब सिस्टर ता ठोल सिस्टर ता स्पेशल सलाम डेरा मुदा पास डेरा मनना यो जहान मनना वालेकुम अस्सलाम ठोल सलाम दोबारा से दो लो यहां से

सो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यकीन नहीं कि चीन और रूस ईरान की किसी भी तरह मदद कर रहे हैं। इनके बकौल मास्को और बीजिंग के पास ईरान की मदद करने की सूरत में कोने के लिए बहुत कुछ है और अमेरिका को इसका फौरी इलम हो जाएगा।

जी इसके अलावा रजब तैयब अर्दगान जो कि तुर्की का प्रेसिडेंट हैं और वो कहते हैं कि मक्का दिफाई मुहिदे को पार्लियामेंट में पेश करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ तय पाए जाने वाले मुश्तरका दिफाई मुहिदे को आइंदा चंद रोज में पार्लियामेंट में तस्दीक के लिए पेश किया जाएगा।

और जी टाइम भी कम है, जस्ट 10 मिनट बाकी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पेशावर में तालीमी इदारे व दफातर खोल दिए गए हैं, BRT सर्विस भी बहाल कर दी गई है। सूबाई दारुलहुकूमत पेशावर में तमाम तालीमी इदारे और दफातर खोल दिए गए हैं, जबकि इसके साथ ही BRT जो सर्विस है उसको भी बहाल कर दी गई है। ज़िले इंतजामिया की जाने से बताया गया है कि आज से शहर के तमाम सरकारी व निजी इदारे खोल जाएंगे और सरकारी उमूर मामूल के मुताबिक अंजाम दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जाने से बताया गया है कि एक रोजा आम तातील का नोटिफिकेशन खत्म किए जाने के बाद तालीमी इदारे व दफातर खुल गए हैं और सरगर्मियां बहाल कर दी गई हैं।

अच्छा जी, टाइम भी कम है, सो आपके मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, हाउ आर यू, शी इज वेरी नाइस, प्लीज प्ले करण हान टू पे, आई एम नासिर फ्रॉम मेरली। चले, बहुत शुक्रिया, मैं ट्राई करता हूँ, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया।

अच्छा, ये नेक्स्ट मैसेज सुपर बाई फॉर यू, मैं आपकी छोटी सिस्टर आमना हटेगा। न कॉलेज में दिल लगता है, न पढ़ाई को दिल चाहता है। भाई आप आपके शो ने मुझे अनपढ़ बना दिया है। वाह वाह भैया, ये क्या कहती है जी डेरा मन है ना।

अभी नहीं हो नाराज। वैसे तू वेल ना अगे खबर है ढेर खुआन कड़े वो ची रस बई था दे वेल ची जस ओग नशे वेल है मोज शर्मे और भाई आपके वॉइस पे वॉइस बहुत अच्छा है, नाइस माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। मैं फिर डेरा मने ना यू जहन बने ना खबर है शकील खान हो गड़ा जिस अंदर ने शिवे लगे शहर में भाई जान सरंग ये जसिदरा फ्रॉम रजमक भाई दा से मैसेज दिली कल है दा हो गोरा फारसी की दिली कल है के बस की दिली कल है दा हो दा से इंडस्ट्री क्लियर होली के कहने डेर मन ना सिदरा मैसेज के वाले नेक्स्ट वेलकम तरीखान दा हो और गला ये संग ये शो हो तेरा शवा राना बस सलामे वाहला तरीखान सोंग न हुडो रज भाई ते में सलूम आई एम खुशी खान खटक डेरा मनना खुशी खान खटक लोया खजा से बस फिर की अटेंडेंस वो लगाऊं ब्याह डेरा मनना यही कना इन ग्रेड मलक यही छे नैन मो मैसेज बनवाल जुबान के शामिल का शोक से अच्छा जी

ठुलो भने न शुभ इन्सले युजुअल ब्यादर सर किजु मुलाकात द 10 न 12 बजे परे स्टोरी महफिल शो के परे बर दो गान गया सदै द ठुलो युजुअल ब्यादर भने न सो इज जस्ट बदन गुण द लयला पमा

पोएगी नु बता लो रिजल्ट सिंग अदर के भी मिसाल पतो गजता कीमती न कीमती ओ तिफदर कमा कीमती न कीमती होगी दर कमा खुद पाई पोएगी ना ची व्हाट इज दिस दिस इज दे दा बतरी के इस्तेमाल सिंग दा खुराक चीज दे के इस्तेमाल चीज दे

0: देखो।
1: हर कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, हर कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, दिल से दिल की दूरी नहीं समझता। कोई किसी की याद में मर मर की जीता है, कोई किसी की याद में मर मर की जीता है, और कोई याद करना भी जरूरी नहीं समझता। वेलकम बिग प्रोग्राम की ओर भी, मोस्ट वेलकम डीरा, मनाने शुक्रिया शुक्र कुरबान दगा लिश किलिश की इस वो बकराजी प्रोग्राम बिल्कुल सुनी पनेगा दी 88.4 अमन रेडियो खरक दला रही हो रही का ना okay. उस पर दमंग आवाज निकट की गुरु में कुल उस पर आवाज मुकम्मल सफा दर्जी खान
2: जितना फिर भी आंखें सुने
1: उस पर दमंग आवाज उसने मुकम्मल क्लियर सफा दर्जी खान वाई हाई एंड हेलो मोस्ट वेलकम माई डियर ब्रदर इट्स मी डॉक्टर आयशा जानी फ्रॉम ब्यूटिफुल खाड़ी रजा मनस्ता मैसेज मंगर इट के वही पाकिस्तान जिंदाबाद अहमदार पाइंदाबाद अहम डॉक्टर आयशा जानी फ्रॉम नौरंग सलाम आईम खुशबू फ्रॉम करक बाई प्रोग्राम बहुत नाइस से मैं सुन रही हूँ अड़ी रजा मेहरबानी शुक्रिया जित मंगा प्रोग्राम हो रही का ना okay. और खामोश लिस्नर ये कल कल पे मैसेज हम कभी ढीरा ज्यादा मन शुक्रिया जी बिल्कुल ताज मैसेज जिसका वाली शी टेलीफोन कॉल के वाली शीप 0370325612 0370324567127 बांधे जान सर दा खबर नोट के चेतास वाले जी मख पाने में एक नीज दी एक नीज मंगा पुष्टु कोर तजवाने की वायु कम चे स्त्री स्त्री दाने राखी जा माती की धागी ने ब्या ब्लीडिंग यानी विंदर आउजी मख पाने खोरी के वगम मखटूल खराबवी वसरा वसरा मख की स्तगान पैदा की या दाग दानो सुर न माती की धागी की होल यानी सूरी पैदा की उर्स त्रबल सिवा की याद आवी चिस्ता सुद मख उर्स त्रबल अडिल जात खराबी की दागी ने पीप राउजी दागी ने स्पिन स्पिन उबर आउजी मख पाने में तूर तूर दागुन रागली दी या तूर तूर मीखुन पे रागली दी कम जिदासु पनुकुनु बाने नुसीवाने या पतार पत्रिंग बांदरुबा से गना या मखपाने मुइस्तान समसे वाशिविदी या मुस्तुर गुलाने हल्की मुकम्मल तो ऋषिविदी अदगे टूल मसलो मसाल पर मुकम्मल जिम्मेवार से रियो प्रोडक्ट्स कम जो लिखी की इंडियाना व्हाइटनिंग क्रीम तरीके इस्तेमाल जान सर नोट के इंडियाना व्हाइटनिंग क्रीम तरीके इस्तेमाल सरंग दी और कुर्बान शरंग भी इस्तेमाल हुए जान सर पहला तरीके इस्तेमाल नोट कवरी शीच इंडियाना व्हाइटनिंग क्रीम तरीके इस्तेमाल सरंग दुता सुबह मुकम्मल सरंग इस्तेमाल हुए
2: बड़ी मशहूर है ये आंखें
1: इंडियाना व्हाइटनिंग क्रीम से बताओ सो लाजिम इंडियाना विटामिन सी फेस वॉश इस्तेमाल उस इंडियाना विटामिन सी फेस वॉश चाह पारदी सरंग बकार की जान सर लिस्ट की खबर नोट के छी।

अब तो खुशी का गम है न गम की खुशी मुझे, अब तो खुशी का गम है न गम की खुशी मुझे, बेहस बिना चुकी है, बेहस बिना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। वेलकम प्रोग्राम की वारी प्या, मोस्ट वेलकम डेरा ज्यादा मदन, शुक्रिया प्रोग्राम तो लिखी इंडिया ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान, मत लिखी हम हजार तो लिखी सुख सुख द चर चरत ना बिल्कुल प्रोग्राम कर मोस्ट वेलकम मायमा जिक पदे खातिर मानी था जमंग आवाज जमंग परवाना जमंग अंदाज जमंग जमजमाता सुनी पने का द सितंबर ना द कंदुखेलु ना द खरक ना तख्त नसरती ना द मेटा खेलु ना द अम्बेरी कला ना द जेल चौक ना द रहमताबाद ना द अहमदाबाद मेली ना द बहादुर खेलु ना द वजीर ना द खरक ना द लकी ना द मरवतियानो ना वर्तरवसरा द नोरंग ना द वजीर ना जमंग सर द बनुगुल ना टूर द प्रोग्राम के मोस्ट वेलकम मायमा डेरा ज्यादा मदन शुक्रिया द शेकुरो जमंग सर मैसेज स्टासुराजी पर 0370 3752 5127 पांदे इन चलाता सुयो वार इस्तेमाल की इंडियाना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दिद्रुबा बस सवा सहर वक्ती द खैर जान द सवी कना जमंगा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाजी फारूक खान ला अभागल तन बाजार नंबर प्रोडक्ट्स रोडी कना नु बिल्कुल द कब्रिस्तान न दिद्रुबा रा पासो बिल्कुल तलाड़ा शाह द हाजी फारूक खान खवाला अभागल तन प्रोडक्ट्स रावाला वियो द इस्तेमाल के कना रिजल्ट इधर कुन बिया टू लो कजन तवाए कना कजन बिर तवाए च द सरंग दासी शाइस्त शवी कना तोर तवाए च बस जादुई कमाल मिकर दो जान ने प्रोडक्ट्स रावड़ी दिताउस ते वली हुआ दुमरा बेहतरीन प्रोडक्ट्स माशाल्लाह चाची यो वार इस्तेमाल कहा बटूर पैगाम लेगी खा उस्मान खटक भाई दवाए मैं कहना बिल्कुल पैगाम लेगी कंजूसी बना कवे खा।

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Sitam hai khudaya, kyun pyar banaya.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम पिलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
4: सिफात जैतून हर्बल आयल कतासु विख्त गुर्जीगी यादा मैदी तकलीफी और या ब्लड सर्कुलेशन मो ठीक नेवी जुड़ो दर्दुना यादा पटो दर्दुनेवी या पा बदन कम जाए के मोह दर्द वी और दादीना इलावा तासो द बवसीरो डेर ऑपरेशन ने कड़ी वी और ठीक शेवी नवी तदी टोलो मसलो हल द पारा सिफात जैतून हर्बल आयल इस्तेमाल करे दावत आसोता करक बनु लकी मरवत शिमाली वजीरिस्तान जनूबी वजीरिस्तान टांग और डेहान के हर कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर के आसानी सरा मिलावेगी। नोस लाडशे निजदेक कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर ना सिफात जैतून हर्बल आयल तला सक रहे। मजीद मालूमात पारा सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मेन डिस्ट्रीब्यूटर जहांगीर साहब सरा पदे नंबर रबिता कवले शे 0301 80 84 300।

पर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

हम और सुनाते हैं हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपकी दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके एहसास का

0: खाना जी बिल्कुल कले बन ले वो तो मुसरा पर बैकग्राउंड की उड़वाए आओ दिस से लायो काल हमर सरा उखली दा से एक का दुका मुदलायो काल नंबर दे जी 0330 0344 717 नोट एक जी 0300 0300 3 4 4 5 यानी 0330 0344 717 कलर दा वक्त कस्ती मिस्टर अशोक ताई किम जिनाई कॉल कराई सवेलो गोड़ी अस्सलाम वालेकुम जख बिल्कुल ठीक ठाक तखाई जुड़े बिल्कुल मीनावल बस खदी जोड़ दी ते पता होगा कि जोड़ दी का ना दी जो हाँ दादे कला खरूब कड़ा दाम हाँ दा खूब दे रट जोड़ा बाद भी का ना बिल्कुल बिलु से जुट से जमाना बस सबू ये जुड़ का खैर दे दाखो दिया बेगा प्रोग्राम हम ने भी बुरी दला अच्छा मोबाइल न मिला दे लासे बजे वाल दे मोबाइल दले हो
1: मोबाइल वो भी दलो मखो मखो मना ना हो प्रोग्राम ये मना दे दला हां हम खाओ सॉरी तो करो
0: को अच्छा अच्छा चलो जमाना ला दे खैर वो की बंगशा दे ठल ना दे कॉल करे दे सब रेल पकोड़े आमीन आमीन और देखो शिफा कंपनी शिफा प्रोडक्ट दुकान के जैसा रास्ता का ना हाँ जी जी सही खबर है तो बस अगे तो पैसे वीर काम अगा भी देता रूढ़ी दुकान के तक शेर दा बला दर्सी देना उखली भी खर्ची जी उषा शायद शायद बस दाग से कहो बस दाखो नन अशोक भी मुर्दा अच्छा अच्छा अच्छा अला दे खकी अला दे मरीज खकू जी सही है बस अला दे बीमारान खकी जे दुई लयाशी नो खा खबर था और डेरा डेरा मनना दे हम कवम बंगश दे काल कवली जे तासुरा ले प्रोग्राम में प्रोग्राम रस रखले का खौरे दे खोय नशे हो जा मना सबाब वालेकुम अस्सलाम डेरा डेरा मनना दे काल कवली जी ओके जी

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवन रंग अमन।

0: हजुर सही अच्छा जी कसी शिकार बने जर से नंदे नंदे चारे जोड़ी दी कना उदा खालक दे मिसकर्स खजी डबल कॉल कसी जसो को दिखेम देना दे
1: अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू मफरहू जन्नतुल

0: Haji,
1: So बिल्कुल नेक्स्ट कलर गुरु बैक टू बैक तिकाल से सिला वो जरीवी 0927-291-292 गुरु नेक्स्ट कलर अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मुस्तरे सो खबर की किम जना
2: हेलो
1: जी जी आवाज दे रुसी मुस्तरे सो खबर की खुराके में किम जना
2: चोटी
1: ईमान चोटी ईमान तो प्रोग्राम के जरिए हर कहला स्टडी मासी بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاء اللہ خورزی تو چاہیے شاہباز شاہ مجھے بالکل شعیب الحمد للہ پروگرام نسرے بور بھائی

जफाओं से तूने मेरे दिल को तोड़ा, मुझे तूने जालिम कही का न छोड़ा, हुआ मुझको मालूम।